0: जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा के शुभ नाम के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वेल एज वी ऑल नो यस्टरडे वाज मदर्स डे इन साउथ अफ्रीका एंड वी कमेंस टुडेज प्रोग्राम एक्नॉलेजिंग आवर डिवाइन मदर। इन अ फ्यू मिनट्स आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हाट्स ऑन टुडेज एडिशन ऑफ गीतांजलि।
1: यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि मंडेज 6 to 7 PM लोटस FM।
0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम है गीतांजलि। तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक नेक विचार के साथ। एंड सिंस वी आर स्टिल इन द ईथॉस ऑफ मदर्स डे, टुडेज हिंदी लेसन इज बेस्ड ऑन द मदर। और मैंने आपसे कहा कि संगीत की दृष्टि से आज का म्यूजिक सिलेक्शन कुछ अलग सा है। टुडे वी ब्रिंग यू सम वंडरफुली स्क्रिप्टेड सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू द मदर। यू टेल अस व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग। आई कांट प्रॉमिस टू प्ले इट। आई एम होपिंग दैट द फ्यू सॉन्ग्स दैट वी हैव आर सम ऑफ योर फेवरेट्स। बट नंदलेस, इफ यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग डेडिकेटेड टू द मदर, यू नो वे to send your message to। और प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बार फिर से। और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस idiom का मतलब क्या है। और आज का idiom है मुद्दे पर आना। मुद्दे पर आना, what do you think that means? Once again, it is मुद्दे पर आना। और प्रोग्राम के आखिरी भाग में आज हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। ही इज विषय भूला। ही इज स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ द त्रिशा म्यूजिक अकेडमी। एंड द अकेडमी इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क इन प्रमोटिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। एंड विषय जॉइंस अस to tell us more about some of their programs. Aur kuch ikshanon mein hum thodi si hindi sikhenge.
1: You are listening to Geetanjali, Mondays 6 to 7 PM, Lotus FM.
0: And it is now time for us to learn some Hindi. As we always do, we give you a quote in the Hindi language and thereafter we give you its corresponding English equivalent. And since it's Mother's Day yesterday, it's been Mother's Day yesterday. Today's lesson in Hindi is about the mother. A very, very beautiful one indeed. Very philosophical in nature, and it reads like so. एक माँ है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है। एक माँ वो है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। So that very simply translates into English like so. A mother is someone who can take the place of all others, but whose place no one else can take. And I think you will agree with me that that makes a lot of sense. So let's take a look at the first sentence again, and it reads like so. एक माँ वह है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है। एक माँ means a mother. वह है is that someone, अन्य सभी refers to many people, की जगह, जगह means place, की जगह ले सकती है। She can take the place of many people in your life. So perhaps suggesting that a mother can wear many hats indeed. And it goes on to say, लेकिन simply means but, जिसकी जगह, whose place, जगह you do know means place, जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जिसकी जगह कोई और meaning nobody else can take, कोई और नहीं would be nobody else can take. So a good one there again. एक माँ वह है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। So one grammar piece that I want to bring to your attention, there's the word और and there's the word or. So और means or means a direction. Okay, so a mother is someone who can take the place of all others, but whose place no one else can take. That is what today's lesson is all about. So if your mom's around, do treasure her, because that's what she does for you. She treasures you. That is something that goes without saying. Hope you enjoyed today's lesson. Thank you for tuning in.
1: Lotus FM. Share the experience.
0: बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा कि इस idiom का मतलब क्या है. आज का idiom है मुद्दे पर आना. So quite a few of our listeners didn't quite pick that up or catch it in time. So this is the idiom for today, mudde par aana. So there you go. I'm sure you've heard of this somewhere. A good one to know. Chaliye program ko aage badhate hain. Is bahut hi khoobsurat rachna jo hai Seema Nannu ki ruhani awaaz mein.

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं रोते हैं ये बंद हो जाती है। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।